0: क्या बात है। रोन भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुम ऑल द वे एक बार स्टूडियो आए, हूँ थोनों आते रहना पैना क्योंकि गल्लां बातां भी करांगे और नाल दी नाल साडा मैसेज असी चाहुंदे आ कि सलीम
1: होलसेल क्लब विच कीमतां घट हो रहीयां हन,
2: पहलां नालों वी घट।
1: आ वेखो सैन पेलोग्रिनो दीयां चुड़ियां होईयां किस्मां 6x330ml सिर्फ $5.99 च।
2: ए तां होर वी घट है,
1: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तों वी घट।
2: ओए तू किथे जा रही है?
1: अपने बिजनेस लई पैसे बचाउण। तुहाडे बिजनेस लई पैसे बचाउणा साडा बिजनेस है, इस लई असी कई आइटम दीयां कीमतां घट कर रहे। हाँ, कोई फीस नहीं। होर जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो।
3: Wholesale Club, whole lot of value.
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

ठंडिया मिठिया छावां वर्गी मां बोली है मावां वर्गी ठंडिया मिठिया छावां वर्गी बाल पुने दे चावां वर्गी ते सज्जन दियां खुलियां बावां वर्गी खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी आओ इस दी शान वधाईए एदे सोले रल मिलगाईए क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहीदा बंदा जदों बोले तां पछाण होना चाहीदा अपनी पछाण वाला दीवा ना बजा दिओ वेखियो पंजाबी ओ पंजाबी ना भुला दिओ वेखियो पंजाबी ओ पंजाबी ना भुला दिओ।

0: What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: S&S Lawyers को इना सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ

0: 7997877sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना वो करे नहीं बन पाना।
2: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
1: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पाठ जागो अते वेडिंग ली आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
3: पिछले 18 सालों तो मॉर्गेज दिया सेवावां देंदे आ रहे अकाल मॉर्गेजेस इंक नाल कम कर दे। दविंदर पवार,
4: फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज, होम इक्विटी, बिजनेस लोन, डेट कंसोलिडेशन, रीफाइनेंस, रेंट टू ओनली, कॉल करो दविंदर पवार नू 6479888731 6479888781।
3: जे नहीं होना खज्जल खुआर ता कॉल करो
4: दविंदर पवार।
3: जेकर एक बार इना तो अड़ी फाइल वेख के हाँ कह देती ता अपने भा देते हमेशा खरे उतर देहान। लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन एंड ऑपरेटेड।
5: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
6: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
5: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
6: 6475592 6478 35 5294। शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन ली, याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ली आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नू 416-930-1251 416-930-1251।
7: नाले चोपड़ियां नाले दो दो।
8: आहो जी मेनू भी पता, नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना, यानी दाना मंडी। दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, दाला, मसाले, पिकल्स, चौल, चाह पत्ती, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
7: डेयरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रेश चिकन, बीफ, गोट मीट, सब कुछ मिलूगा। इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे, चना भटूरा, वेज थाली, वेज बिरयानी, बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
8: एक बार आओगे फिर बार-बार आओगे।
7: अनबीटेबल प्राइसेस, सेल ऑल टाइम। दाना मंडी 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley।
8: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257।
9: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6478355294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 4 2 2 3 6 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1: का विजिटर वीजा भी लेकर आना है।
2: मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
3: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
4: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
5: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
6: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: शो बनाई देख रहे बल्ले बल्ले हो जाती है।
1: यस मम्मी सिद्धू शो दा तन होई है ना।
0: बस सुबह शाम AM 503 रेडियो दी शान ते पंजाबी दा मान मेरे फीमेल बच्चे बुड्ढे दी जुबान ते इको ही ना।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो तां कैन ट्रक नू कांटेक्ट करो। थोड़े कोल AZL लाइसेंस होना चाहिदा है, थोड़ा CVOR बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है, 2 साल दा एक्सपीरियंस वी होना चाहिदा है। कांटेक्ट ले नंबर है 6472957557 6472925757।
3: असी कर दे हाँ फिकर, तुसी रहो बेफिकर, तुसी जियो बेफिकर। की गल भाई जी, एने बेफिकर तो तुसी मेनू कदे नजर नहीं आए। राज की है, बेफिकर होण दा ए राज मेनू दिता है जसविंदर कौर तग्गर दी इंश्योरेंस पॉलिसीज ने। साडी लाइफ इंश्योरेंस ट्रक ड्राइवर्स ले डिसेबिलिटी ते क्रिटिकल इलनेस दे चंगे प्लान्स, साडे पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस ते बच्चा ले RESP। तुसी भी रहो बेफिकर ते कॉल करो जसविंदर कौर तग्गर नू 6477652340 6477562340।
4: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

इस समय 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जी, मोस्टली अज सनी डे शो हो रहा, चलो अज धुप निकल रही है, ते हाई जाना 21 डिग्री, लो जाना 8 डिग्री सेल्सियस, ते क्लाउडी कंडीशंस भी एक्सपेक्ट कीतियां जा रही हैं 2 बजे के करीब। हवा जिहड़ी है 33 किलोमीटर पर आवर के हिसाब दे नाल चल रही है। ते जे आपां देखिए कि अज मौसम तो औसम हैगा, सूरज देवता जी बाय बाय कदों कहणगे, 8:43 ते अज सनसैट हो जाना है। रात का टैंपरेचर भी 10, 9, 8, 6, 5, कल सवेरे 5 बजे 5 डिग्री सैलसीयस टैंपरेचर होगा। तो सनराइज कल सवेरे हैगा जी 5:48 ते, कल भी सनी डे शो हो रहा। सो मौसम खूबसूरत है, तो बिल्कुल इंजॉय करो अज के दिन, सुनते रहो 11 बजे तक गुणतास रेडियो।

7 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स पेस्ट्रीज मठियाईयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचने वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो।

0: फाइंड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन।
2: Rich people don't do different things, but they do things differently.
3: Oh, ki kar dene tere rich people?
4: Tere vang roz kam te nahi jande. Dollars naal dollars bana dene. Chal ek gal dass. Tera $1 million da car paid off hai. Ki tenu kam te jaan di lod hagi hai?
3: Kam te ta jana hi pehna hai. Dollar kitho aan gaye?
4: Bas ehi fark hai. Tu dollars li kam karda hai, te rich people dollars invest karke baith ke khande ne. Je tusi vi aida chahunde ho, ta hun hi call karo Jasvinder Tillo nu 416-278-8869 te.
3: Main kal hi ja ke aana.
4: Rich people aaj da kam kal te nahi chhadde. Hun hi call kar 416-278-6869
5: आप पंजाबी आ गए।
6: IPL चल रहा है only on करो स्ट्रीम। Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.

0: ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
2: Punjabi Versa!

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macvin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया आटा दाल चावल आले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड
3: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
5: विमला विली जिला विलिच पढ़दी पीयूच जंट पढ़दा विमला विली जिला विलिच विमला विली जिला विलिच पढ़दी सस्त्रीकाल जी मैं हां थोड़ी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल

0: एट राइट, इफ यू गो टू द टॉप बैंक, फाइव बैंक जो है टॉप बैंक उनके पास जाएंगे, इट टेक्स 2 ईयर आफ्टर यू डिस्चार्ज द कंज्यूमर प्रपोजल बैंकरप्टसी, 2 साल लग रहे हैं जी, है ना। बट अपार्ट फ्रॉम, मेरे पास सोल्यूशन है जी, इट्स नॉट बैंक, इज नॉट ओनली द ऑप्शन, बैंक के अलावा भी आपकी मॉर्गेज हो सकती है। दो चीजें इसमें, कंज्यूमर प्रपोजल बैंकरप्टसी करनी है तो यस इट कैन बी पेड ऑफ इधर थ्रू द रीफाइनेंसिंग और थ्रू द सेकेंड फाइनेंसिंग, दोनों ही ऑप्शन है। बट कभी कभार क्या होता है कि इनको देर सम ऑफ द होम ओनर दे डोंट वॉन्ट टू पे, देर लेट सपोज द कंज्यूमर प्रपोजल इज गेटिंग एंड इन 2028, so they can continue paying a small portion, a small amount, right, as and when they grow, or साथ साथ उनको equity निकालनी अलग से 50, 100, 200 grand, तो वो भी possible है mortgage refinancing के through, है ना। तो दो चीजें इसमें, आप consumer proposal आप pay करना चाहते हैं, yes possible है, अगर आप नहीं भी pay करना चाह रहे हो still you can get the extra money, होम रेनोवेट करवाना है, अपने डेट्स पे करने हैं, बच्चों के स्टडीज के लिए, वेडिंग के लिए पैसे चाहिए, तो यस आपको कंज्यूमर प्रपोजल आपने फाइल की है, बैंकरप्सी फाइल की है, एक्टिव है, और आपको कंफ्यूजन है कि मुझे पता नहीं क्या करना है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड यू नीड द फाइनेंसिंग, तो यू डेफिनेटली कैन कॉल मी, दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन, नंबर टू कॉल मी 6475127000, 6475127000।
1: जी मुकेश जी वेलकम, सुखी बोल रहा हूँ। मुकेश जी आज मेरे एक बहुत बड़े बिल्डर के साथ मीटिंग थी, सुबह से अभी तक अभी मैं पहुंचा हूँ स्टूडियो, लेट हो गया, तो अगर बहुत सारे अभी मैंने अनाउंस किया तो काफी फोन कॉल्स बज रहे हैं, सभी के आंसर करेंगे हम लोग, नंबर है 4168817070 पे। सो मुकेश जी अगर वो रिटेल यूनिट में भी आप हेल्प कर सकते हो मॉर्गेज की?
0: बिल्कुल कर सकते हैं। देखें सबसे पहले सुखी भाजी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और पहली बात है कि देखिए कोई भी होम ओनर घर भाई कर रहा है, कोई आप भी रियल स्टेट में हो, काफी रियल्टर ब्रदर सिस्टर हैं, तो आप सबसे पहले उसका प्री अप्रूवल लेटर लें आप, ठीक है जी। आज की डेट में प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, चाहे एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आई विल हेल्प योर क्लाइंट, पहली बात है। दूसरी बात है कि साथ साथ रिटेल में जो भी बिल्डर क्लोजिंग आने अभी आने वाले इस साल में है या नेक्स्ट ईयर में है, आई कैन हेल्प यू, मुझे आप बस सिर्फ क्लोजिंग से मुझे आप 1.5 मंथ 2 मंथ पहले कॉन्टैक्ट करें, आई विल सी व्हाट एग्जैक्टली मीटिंग करनी, क्लाइंट के साथ मिलना है, जो भी आई नीड टू एक्सप्लेन टू द पीपल द होम ओनर, आई विल हेल्प टू क्लोज योर मॉर्गेज।
1: ओके सो नंबर दीजिए प्लीज,
0: 6475127000, 6475127000। सुखी जी एक चीज और है, दोज पीपल जिन्होंने अपनी एक या दो पेमेंट मिस करी है, तीन पेमेंट मिस करी है, और बैंक से अगर लेटर आ गया है तो आप चिंता मत करें, आ है वह सोल्यूशन। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर किन्होंने मॉर्गेज मिस करी है, बैंक की मॉर्गेज मिस करी है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स की बात नहीं हो रही, वो तो नॉर्मल है, अगर मॉर्गेज पेमेंट मिस करी है, एनी यू इन अ ट्रबल, गिव मी अ कॉल, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू गाइज, मैं आपकी मॉर्गेज रेगुलर करवा दूंगा जी, आपके जो भी आपको एक्स्ट्रा फंड्स निकालने हैं, पैसे पहन निकलवाने हैं, कोई भी और डेट्स पे करने हैं, आई विल हेल्प यू टू टेक द मनी फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर एक्विटी।
2: बिल्कुल जी, सो थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपने बड़ा जो है आज का सेशन हमारा बड़ा इन्फॉर्मेशन वाला था,
0: सो
2: बिल्कुल जी गलबात हो सकती है, 6475127000, 6475127000 ते तुसी जेड़ा जी मुकेश जी दे नाल गलबात कर सकते
1: जी। मुकेश जी थैंक यू, और प्रोग्राम का हिस्सा तुहाडे तक नोवल फ्रेश फूड दे सहयोग नाल पेश कर रहे हैं दो लोकेशन ने, हाईवे 10 अते बुवेड दे कॉर्नर ते, दूजी सैंडलवुड एयरपोर्ट कॉर्नर ते, जिथों तुसीं बिल्कुल फ्रेश सब्जियां दे नाल साफ सुथरियां दालां खरीद सकते हो होलसेल दे भाव दे विच, दूजे स्टोरां नूं किते वी सस्तियां तुहानूं मिलदियां ने। तीजी लोकेशन बहुत जल्दी वतनों दूर ओपन करन जा रहा, उहदी सूचना भी आने वाले दिनां च देवांगे। प्रोग्राम का हिस्सा समोसा स्वीट फैक्टरी दे सहयोग नाल पेश कर रहे हैं, 416-213-1165 नाल दी नाल सहयोग है जी बुडमाइन बैंक उठाल, कोई पार्टी करनी चाहते हो 416-743-0003, सिंगापुर जूलर जिहड़ा 905-612-1500 ते कॉल कर सकते हो, टिक्का जंक्शन दे सहयोग नाल भी अज दे प्रोग्राम नूं पेश कर रहे हैं, रदरफोर्ड ते क्वीन दे कॉर्नर ते बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट, बहुत स्वाद खाना ते लाइव म्यूजिक गाना भी तुहाडे लई चलदा है। एक बार फिर मैं अनाउंस कर देना, ਕਿਰਨ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ

0: ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਊ ਵੈਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 24/7 ਰੋਡ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ 170 ਗਿਲਡਨ ਰੋਡ ਜਿਨ ਨੰਬਰ 17, 170 ਗਿਲਡਨ ਰੋਡ ਜਿਨ ਨੰਬਰ 17, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 647-302-1322-347-302-1322-342-1322-342-1322-342-1322-342-342-1322-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-342-
1: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure, 10 to sham 7 baje tak on dining and takeouts. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana bhatura. Wednesday, lajwab veg thali. Thursday, yummy haka thali. Friday, maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is Simply Indian. This sariya hi locations stay. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab, Simply Indian.
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
3: इसे लिए मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सम्राज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लिए हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सम्राज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: ये है टोरंटो दा हरमन प्यारा रेडियो देश परदेश
6: फॉर एडवर्टाइजमेंट्स एंड
5: इंफॉर्मेशन
6: कॉल अस नाउ 416-457-3381 416-457-3381 या फिर 416-725-2551 416-725-2551
7: Hello AM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ
0: ਟੁਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-564-6444
7: 905-564-6444

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल इतनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका
0: ते सेविंग्स भी।
2: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 चो।
0: ओहो, उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
3: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
2: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
4: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
5: Swing in the golf season with AM 530 at the MCPA 33rd Annual Golf Tournament, June 10th at Piper's Heath Golf Club. Sponsored by Many Systems, Avenue Building Group, Liuna Local 183, Liuna Central and Eastern Canada, LSJ Services, and AM 530. Registration fee support community services and includes 18 holes of golf, power cart, prizes, lunch, and dinner. MCPA, meaningful interactions create benevolent acts. Register now or donate at micba.com.